0: नरुअ डिस्ट्रिक्ट कया डीजे निशिया
1: कमेंट सेक्शन के दस दस से सीमा पहु करा है भाई मंगवाट अभियोगे दिल तीन बुलाना रहा है दहाई वेद भी कमेंट जिसे पंद्रह से सीमा पहु करा नोना